फूल कुछ चाहिए हुजूर हमें, जुल्फ रुख से हटा के बात करो, रात को दिन बन